0: जय हो।
1: ओम श्री गुरु नानक की जय।
0: जय हो।
1: ओम विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर नंद चिउदेवा की
0: जय हो।
1: श्री देव देवा की
2: जय।

ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलम्।

श्रीदीप नारायण भगवान श्री देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु महामान्य रेस्वासी स्वामी
1: माइस्टर नारायण जी गुरुदेव की जय।

0: ओहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. True. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य।

0: श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवपुरुष महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।

0: नाहंकारता प्रबुदीपकारता महा प्रबुदीपकारता हि केवलम् ॐ शांति शांति शांति ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय। Salutations to the cosmic self.
1: Ozdravení vesmírnému já.
0: Salutations.

आत्मा दर ध्यान सोहम मुनि मोहन सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख गुरु दीप हो पर नाम सायर आप ही परमात्मा

0: प्रभु सर्व जगत आत्मा सुख कंद हो आनंद जी निष्कंद हो मम तारणम निष्कंद हो मम तारणम। ओम शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की,
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर
0: देवपुरी जी महादेव की।

0: सतगुरु भगवान की जय हो।
1: अच्छा बोल दो,
2: बोल दो मामा, एक आध बोल दो, फिर से आप
3: बताओ।
1: थे बोल दो,
0: बोल ले,
3: नहीं हाँ
2: ये

0: नींद का जड़ा जाए
1: नींद हो
2: गम कर
1: मुझे
0: फिर और काटी है महाराज काटी है
1: अरे ओ माय
0: गॉड यू वॉक
3: चलो आवाज बोलो सर।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरु देव की जय।

हिंदू धर्म सम्राट सतपुरुष माधव कृष्ण भगवान की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय हो।

0: ओम शल गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय।
1: जय
0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय।
1: जय
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय।
1: जय
0: सैल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ।